0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
4: पोला भाई
5: फुल कहारी उत्ते बेल बूटियां मित्रां दे चादरे ते पा दे मोरी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल ते तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: लो जी तुहाडी नजर है भोला।
1: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट choice।

सुनील ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए भोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू।
4: हां जी 1600।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1600 ਚੌਕ ਕਰਕੇ।

this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए,

0: नेक्सस।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: रेडियो हांजी 1674 AM

0: प्यारी प्यारी मूमल।
1: वाह।
0: तो कृष्ण जी, आज की जो कहानी है ना, ये एक ऐसी आइकॉनिक पिक्चर से है जो राजस्थान में अक्सर आप मेलों में या बहुत सारे लोगों के घरों में एक पोस्टर देखा होगा आपने, जिसमें एक लड़की होती है बंजारन के भेस में और एक ऊंट पे बैठा राजस्थानी पोशाक में एक सुंदर सा राजकुमार। तो ये जो पिक्चर है उससे जुड़ी ये कहानी है मूमल और महेंद्र की। अब मूमल जो थी ना, बेसिकली ये लव स्टोरी है, ये है 16वीं शताब्दी के आसपास की कहानी। तो लोधरवा गांव की राजकुमारी थी, उसका नाम था मूमल, जो गांव आज जैसलमेर में आता है, और अमरकोट गांव का एक राजकुमार था महेंद्र, जो आज पाकिस्तान में वो एरिया है उसमें आता है। ठीक है, तो इनकी कहानी है। कहते हैं कि जो महेंद्र था, उसकी बहन की गुजरात में शादी हुई थी। तो एक बार महेंद्र अपने जीजा जी को ऊँट पे बॉर्डर तक छोड़ने गया। लौटते वक्त उसने सोचा कि मैं लोधरवा गांव में रेस्ट करूँगा, क्योंकि लंबा सफ़र था वापसी का। तो जब वहाँ वो रुका, तो उसने देखा, उससे गांव के लोगों ने राजकुमारी मूमल की सुंदरता के बारे में बताया कि बहुत सुंदर है, और बहुत सारी उनके बारे में बातें बताई। ऑफकोर्स क्यूरियोसिटी तो जग ही गई थी, और बात ये थी कि उनका स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर में बड़ी अटपटी सी और बड़ी अनोखी सी तीन शर्तें थी। तो जब महेंद्र ने सुनी वो शर्तें, उसके दिमाग में लगा, यार ऐसी भी कौन सी सुंदर बला है कि इतनी खतरनाक खतरनाक शर्तें रखी हैं इसने अपने स्वयंवर में। तो शर्तें सुनो पहले। पहली शर्त थी, एक चारपाई पर आपको पूरी रात सोना है, जिसके जो धागे हैं, निवार जो बोलते हैं हम जिसे, निवार के जो धागे हैं वो इतने कच्चे हैं कि 1 किलो क्या 1 ग्राम वजन भी वो नहीं सहन कर पाएंगे। पूरी रात आपको उस चारपाई पर बितानी है। दूसरी शर्त थी कि आपको गाय का दूध निकालना है एक ऐसे घड़े में जिसके पैंदे में इतना बड़ा छेद है कि पूरे एक हाथ के बराबर। ये तो थी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त थी, एक ऐसे दरवाजे को खोलना है जिसमें अलग अलग तरीके के ऐसे होल्स हैं जिनका मतलब कोई एक कोड के बिना वो खुल नहीं सकते। बड़ा टेक्निकल था। तो ठीक है, महेंद्र कौन सा मानने वाला था, उसने कहा चलो जी चलते हैं। तो जैसे ही महेंद्र महल की तरफ बढ़ रहा था, उसकी मुलाकात हुई मूमल से। वो कहते ना एक आंखों, कहते ना नजरों ही नजरों में दोनों को एक दूसरे को नजरों ही नजरों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब भाई शर्तों को पूरा करने की बात। तो महेंद्र ने पहली शर्त की, उन्होंने क्या किया, चारपाई पर इस तरीके से लेटे कि पूरा वजन चारों कोनों में रहा। शरीर का बीच का जो वजन था उन्होंने बिल्कुल चारपाई पर डाला ही नहीं, पूरी रात इस तरीके से उन्होंने ईजिली निकाल दी। अब दूसरी शर्त की बारी आई। दूसरी शर्त थी कि आपको घड़े में दूध भरना है, लेकिन घड़ा जो उसका पहंदा है वो उसमें इतना बड़ा छेद है कि एक हाथ हाथ के बराबर। तो महेंद्र ने क्या किया, चलाकी से अपने पैर के घुटने को वहाँ फंसा लिया और दूध निकालना शुरू किया, घड़ा आसानी से भर दिया। दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब आई तीसरी शर्त की बात, जिसमें दरवाजे को खोलना था, और दरवाजे के छेद को कुछ एक पर्टिकुलर एक ऐसी सुपारी से खोलना था, और किसी तरीके से वो खुल नहीं सकता था। अब यहाँ महेंद्र फंसने लगा। तो फिर जो राजकुमारी की सहेलियाँ थी वो बीच में आई, उन्होंने बोला कि उन्होंने उसे बेसिकली चलाकी से डीकोड करना सिखा दिया, क्योंकि उनको भी पता लग गया था कि मूमल को भी महेंद्र पसंद आ गया है। तो स्वयंवर तो बहाना था, ऑलरेडी मूमल ने महेंद्र को पसंद कर ही लिया था। तो तीनों शर्तें मान ली, और महेंद्र और मूमल ने एक दूसरे को गले लगाया। लेकिन महेंद्र ने समझाया कि देखो, मुझे अपने घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, तो मैं वापस आऊँगा। लेकिन एक वादा करके महेंद्र गया कि मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन शादी करने मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन हर रोज़ जब तक मेरे घर वाले नहीं मानते मैं तुमसे रोज़ मिलने आया करूँगा रात को। ठीक है, ये कहकर महेंद्र निकल गया। अब वादे के अनुसार हर रात उसने आना शुरू किया ऊँट पे बैठकर। अब महेंद्र की जो पहली पत्नी थी, उन्हें पता लग गया कि ये रोज़ कहीं ना कहीं जाता है। ऑफकोर्स वो जेलिस तो होना ही था, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को बताया। तो उन लोगों ने क्या किया, जो उसका महेंद्र का पर्टिकुलर ऊँट था ना, उसे बदल दिया एक ऊँटनी से। तो महेंद्र शाम हुई फिर निकला मूमल से मिलने। तो वो ऑफकोर्स ऊँटनी जो थी वो रास्ता भूल गई और वो घूमते फिरते भटकता रहा और मूमल तक नहीं पहुँचा। मूमल ने भी उसका बहुत इंतज़ार किया पर थक हार के वो भी बेचारी सो गई। अब सुबह मूमल की जो बहन थी सुमल, वो दोनों खेल रहे थे और उसने क्या किया, सुमल ने एक भेस बनाया एक आदमी का, तो वो दोनों खेल और वहीं आराम करने लगी। तो जैसे तैसे करके महेंद्र पहुंचा एक दो दिन बाद, तो उसने देखा, एक दो दिन नहीं अगले दिन शाम तक पहुंचा, तो उसने देखा कि जो मेरी मेरी कह लो प्रेमिका है या मूमल है, वो किसी उसके आस पास में कोई और सोया है। तो वो एक गलत फहमी का शिकार होके गुस्से में चला गया क्योंकि उसका दिल टूट गया था ऑफकोर्स। तो ये तो यहाँ ये इसका कह लो पार्ट वन कह सकते हैं हम इसको, मूमल और महेंद्र की कहानी का, कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग से उनकी जो लव स्टोरी में खटास आ गई। अब दिन बीत गए, काफी दिनों तक मूमल इंतजार करती रही, हर रात उसने वेट किया पर महेंद्र आया ही नहीं क्योंकि वो तो नाराज था। और महेंद्र ने क्या किया, अपने जो सैनिक थे दरवाजे पे उनको कह दिया, अगर मूमल के गांव से कोई भी संदेश या कोई भी इंसान आता है तुम्हें उनको कह देना है कि मैं मर चुका हूँ। तो इंतजार करते करते मूमल ने एक दिन सोचा कि आज तो मैं जाती हूँ महेंद्र को ढूंढने। मूमल ने धरा बंजारन का भेस और बंजारन के भेस में मूमल निकल पड़ी अमरकोट महेंद्र से मिलने। महेंद्र ने कह ही दिया था सैनिकों से कि मेरे बारे में तुम बोल, अगर कोई पूछे मूमल के गांव से तो बोल देना वो मर चुका है। अब जैसे ही अमरकोट मूमल पहुंची, उन्होंने सैनिकों से पूछा कि मुझे महेंद्र से मिलना है। उन्होंने कहा महेंद्र, वो तो कई दिन हो गए उन्हें गुजरे। ये सुनकर मूमल सहन नहीं कर पाती, उनके दिल की धड़कन रुक जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है महेंद्र के दरवाजे की चौखट पर। जैसे ही महेंद्र को भनक लगती है वो भाग कर आता है, ये सीन उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो भी वहीं पे पागल हो जाता है और दम तोड़ देता है। अब कहते हैं ना कि लिटरेचर में तो इस कहानी के बहुत अलग अलग सॉफ्ट वे में किस्से सुनाए, क्योंकि लिटरेचर का या किताबों का कहानियों का काम ही होता है कि उसकी हैप्पी एंडिंग करें, पर ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये कहानी लोधरवा के गाँव के बच्चे बच्चे को पता है। तो ये थी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी। कैसी लगी आपको मूमल और महेंद्र की कहानी?
1: वेरी ट्रैजिक, हर कहानी की तरह वेरी ट्रैजिक। वैसे देखो मतलब मेरा बस पॉइंट ये है, मूमल सिस्टर इफ यू आर लिसनिंग टू मी, बंदा व्याया भी नहीं होना चाहिए, ये भी शर्त होनी चाहिए। छोटी सी चीज प्लीज, टेक्निकलिटी तो चलो, क्या बात।
0: अच्छा मतलब यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते प्यार और इश्क में सब कुछ जायज है।
1: अच्छा देखो पितृसत्ता मतलब क्या ब्यूटीफुल चीज है ना, खुद व्याया आदमी ऊन तो डिग डिग भी नहीं कर दोगा ऊन ब्रिडिंग में शोर पर आ रहे हैं और माइंड कर रहे हैं कि यार एक किसी होर आदमी दे ना ब्रो, तेरी वाइफ तेरे घर च वेट कर रही है। मूमल जी अमेजिंग लोक कथा है ना। हाँ हर लोक, मैनू ओ वाली बहुत बढ़िया लगी सी, वैसे थोड़ा जा छोटा जा दोबारा सुना दो।
0: हवा महल वाली कौन सी? अच्छा हवा महल, ओ हो हो,
1: एक बार यो भी दस
0: पंडे फिर से फलटू
1: तरदा तरदा जा दस दो।
0: नहीं हवा महल, हाँ हाँ हवा महल की कहानी मैं कैसे भूल सकती हूँ, कोटा के पास ही जयपुर है। तो आपको पता है हवा महल बड़ा ही फेमस है, आज जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले हवा महल की पिक्चर सामने आती है क्योंकि आइकॉनिक एक लैंडस्केपिंग है। और हवा महल अपने आप में एक ऐसी इमारत है जिसकी नींव नहीं थी, तो हवा महल बना कैसे उसकी ये कहानी है। बेसिकली सुन के तो लग ही रहा है कि हवा महल जहाँ के हर कोने से हवा आती है, हाँ ये भी रीजन है क्योंकि उसका वेंटिलेशन कुछ इस तरीके का था कि बहुत ठंड, आज भी अगर हवा महल देखने जाओ ना तो आपको बहुत वहाँ बहुत हवा चलती है क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन, पता नहीं वो टेक्निकल क्या है लेकिन हवा महल में ठंडी हवा बहुत चलती है। लेकिन इसकी कहानी क्या है और ये बना कैसे? बेसिकली जयपुर के जो राजा थे सवाई प्रताप जी, उस टाइम पे जयपुर बहुत सुंदर था जो कि आज भी है, लेकिन शहर के बीचों बीच सारे समारोह सारे उत्सव होते थे। तो और उस जमाने में जो पर्दा प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर थी। तो जो सवाई प्रताप जी थे ऑब्वियसली उनको उनकी रानियों ने कहा ही होगा कि हम मिस कर जाते हैं. तो सवाई प्रताप जी ने एक प्लान बनाया कि कुछ ऐसी तरकीब लगाई जाए कि शहर के बीचों बीच जो भी समारोह जो भी उत्सव होते हैं वो शाही परिवार की औरतें भी उसका लुत्फ उठा सके. तो उन्होंने ऑब्वियसली उनसे खुद आइडिया तो आ गया था दिमाग में, लेकिन उसे पिक्चर को रियलिटी में कैसे लाएं, तो उन्होंने अपने जो फेमस आर्किटेक्ट थे लालचंद जी उन्हें बुलाया. लालचंद जी को बुलाया और उन्हें अपनी पूरी पूरी थॉट प्रोसेस बताई कि कुछ ऐसा तुम बनाओ, ऐसी एक इमारत या ऐसा एक किला बनाओ जिसमें अंदर से क्या होता है बाहर किसी को पता ना चले और बाहर

0: है, झरोखे यानी खिड़कियां, तो उन खिड़कियों से जो शाही परिवार की औरतें हैं बिना किसी टेंशन के बाहर का जो भी समारोह या जो भी उत्सव है उसका लुत्फ उठा सकती थी। तो आज भी आप अगर जयपुर जाएं तो हवा महल जरूर जाएं और उन झरोखों से झांक के जरूर देखिएगा, आपको भी लगेगा कि आप भी उस इतिहास के उस झरोखों से झांक रहे हो। तो ये है हवा महल की कहानी। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट मैं भूल गई कि जो हवा महल था, लालचंद जी ने वो ऑब्वियसली ये टास्क तो था कि कुछ ऐसा बनाना है जिससे अंदर का बाहर ना दिख सके और बाहर का सब दिख सके। तो जो सवाई प्रताप जी थे ना, वो कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस हवा महल का जो नक्शा था या डिजाइन था ऐसा बनाया जो देखने में, आज भी अगर आप हवा महल को देखें तो आपको दिखेगा कि वो कृष्ण भगवान का मुकुट है। तो वो डिजाइन लेके लालचंद जी ने हवा महल बनाया और उसमें बनाए 953 झरोखे। तो ये थी हवा महल की कहानी।
1: क्या बात है, ब्यूटीफुल।
0: हाँ,
1: 100 पॉइंट्स टू सवाई प्रताप जी, ते मेरे बोलो -22 में इंदर बाहुबली। जसवंत साहब ने पूछा कि मेंदर बाहुबली है, मैं नहीं सर वो नहीं है
0: बाहुबली।
1: देवसेना।
0: जी जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, राजस्थान के छोटी छोटी हिस्टोरिकल प्लेसेस आप जाओ ना तो सिर्फ घूम के फोटो खिंचाने तक सीमित ना रखा करिए, आप वहाँ की हिस्ट्री जरूर जाने करिए।
1: मेरे ख्याल नाल इफ अपार्ट फ्रॉम पंजाब जे ज्यादा वेखे जाए तो राजस्थान ते एमपी को बहुत ज्यादा कल्चरली रिच स्टोरीज है।
0: बाकी सारियां फिर भी संभाल के भी रखी है सारी।
1: मैं वही कहना सी कि राजस्थान ने संभाल के भी रखा हेरिटेज विच इज गुड, मतलब जिन्ना संभाल के रखे। आई एम प्रीटी मश्योर कुछ ना कुछ तो खराबी कोई भी सोनू लव्ज ना शीनम एदा करके लिख के गया ही होगा किसी ने किसी उपर। ये करना नहीं चाहिए बी, कोई करता भी होगा आसे पास रोके
0: पर खैर राजस्थान में ये भी खासियत है कि जितने भी आज के जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा चले जा रहे हैं ना, उन्होंने अपने फोर्ट्स को कन्वर्ट कर दिया है पैलेसेस में, तो वो उन्होंने उसको कमर्शियलाइज कर दिया है, तो वो उस तरीके से वो इमारतें संभली भी हुई हैं। और अगर आपको मतलब लुत्फ उठाना हो किले,
1: एक राजकुमार है ना, मैंने नाम नहीं याद आ रहा, ही इज अ सुपर मॉडल ऑल्सो राइट।
0: अच्छा,
1: और राल्फ लॉरेन वगैरह वास्ते कैटलॉग्स शूट करते क्योंकि ही प्लेज पोलो,
0: सारे करते हैं वो तो, पोलो तो खेलते ही
1: हैं। हां, ते वो मतलब काफी गुड पर्सनालिटी, करी याद है थोनों मैं दसांगा।
0: ओके,
1: बड़ी फॉलोइंग बहुत है।
0: अच्छा, नहीं राजा तो जितने भी है फॉलोइंग की, क्या जो कोटा के राजा है, सॉरी मैं उनका नाम भूल रही हूँ, पर वो आज भी मतलब काफी एज हो गई, लेकिन अगर वो निकलते हैं तो मतलब पता लग जाता है कि हाँ
1: राजा साहब
0: कमर साहब निकल रहे हैं।
1: उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर नहीं शुरू किया
0: था, मतलब कैरी करते ना, कहते ना कि अब जैसे अब फिल्म स्टार्स की बात करते हैं तो इन्हें भी अपना जो कल्चर है, अपना जो लाइफस्टाइल है, वो कैरी करना पड़ता है, भले ही अंदर से इनके पूरे अकाउंट्स खोखले हो।
1: अब सैफ दी वो हैगी ना, सैफ कहंदा कि वो जड़ा साडा पटौदी हाउस है सारा, वो मेनू बाय बैक करना पिया कि जो पुराने बुजुर्ग किसी वेले च है ना दे गए लीस वगैरह, तो मैं 200-250-300 पता नहीं किन्ना करोड़ खर्चा कि जस्ट टू गेट इट बैक। तो वह भी हूँ कहते कि they have made it into some sort of hotel hai na ki vadiya yaar good meri bahut reach hai main thonu last time dassa jagah ki main ghum ke aawa
0: acha mere main lag gaya tusi keh rahe ho meri bhi reach hai ki mere bhi koi palace police nikle
1: haan nahi hote chalo ji
0: date par date
1: hota hun ki kar sakde hain
0: koi pandit ji ne nahi kharida kisi pandit ji ne nahi kharida tade parivar de
1: nahi
0: koi mahal
1: nahi oh sade sab to jehde purane buzurg sige bharadwaj rishi oh ta india de gaye na thonu dassya ta siga ki ohna lanka mili ग्रह प्रवेश मैं नहीं सीगा ना आसे पासे, नहीं तो फिर तो यस होनी ही पूरी। फिर मैं भी इस तरह मुकुट शुकुट पा के बाहर निकला सीगा। जपमन दी मम्मी भी क्विज है गाइस, दसो कौन है। हेलो
2: ही तिरछी टो

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इस बोए बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
2: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: भोले ने कसूते फसाते।
2: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2
4: भोला भाई।
6: Hi, man. I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
7: Bale bale bale.
6: Bale bale bale.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम। क्लियर है विजन मेरी यारो नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम। दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: और जलाओ।
1: हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम।
2: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Hanji, 1674 AM.
5: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: और जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो
7: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
1: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।
2: Oh my God, this is original.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर स्टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर स्टंच विच वी तुहाडी सेवा।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: Buru de bol suk.
1: Men det där joggebägen. Jag gör det så bra, men det där joggebägen.
0: Really sorry bra. Men actually bro, ये तेरे वास्ते गाना लाया
1: इंदिरा राजू के भैया चाह इंदा
0: मैं पिछले हफ्ते तेन उड़ीकदा रहा तू आएगा आएगा छुट्टी होगी
1: मैं जैली ना गया
0: तू जैली ना गया सोनी खोल दे दिल दी कुंडी खोल दे रेडियो हाँ जी 1674 AM ते थोड़ा निका निका स्वागत मैं हाँ कृष्णा मेन आला बलकीरत एंड आज दोबारा असि बह गए हैं बॉयज मीट अप ते
1: मैं जैली ना गया हाँ ते जैली काम हो गया पहले जैली सुना दो एक करी कोई नहीं हटना नहीं

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: थी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: ओ अक्षरा ज्वेलर दी दूजी लोकेशन है रिवर स्टोन च।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर स्टोन विच भी तुहाडी सेवा विच।
5: चक दे इंडिया।
6: भारतीय महिला फुटबॉल टीम AFC महिला एशियन कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। मुकाबला बड़ा है क्योंकि 12 में से 6 टीमें सीधे 2027 फीफा महिला विश्व कप ब्राजील के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब इन ब्राजील ब्लू टाइग्रेसेस अंडरडॉग है और उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत है। ये समय है भारत के लिए अपना जुनून दिखाने का। भारत मंगलवार 10 मार्च को वेस्टर्न सिडनी स्टेडियम में चीनी टाइपे से मुकाबला करेगा।
7: इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
8: डॉक्यूमेंट्स, बैगेज या बिजनेस करियर, बस एक ही नाम, शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक, हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।

0: मथुरा शहर घूमी है तू? घूमी हो जी, घूमी हो उस मथुरा शहर, ब्रिज भूमि, मथुरा, मथुर या गोकुल धाम या बड़े सारे नाम है ने, नंदगांव, गोवर्धन, वैसे तो आले दुआले के इलाके ही ने ये सारे मथुरा के बिच पैंदे ने जेड़े
1: जी,
0: पर उन्होंने इन्हां अलग अलग नामां तो जानिया भी जाता है। और अज मथुरा की गल जो आप कर रहे है तो होली के मौके के उत्ते असीं ये करन लगे हां। गुड चीज ये हैगी है, वैसे तो मथुरा वो है पुराना शहर है, बट जंक्शन है, रेलवे जंक्शन है ते अच्छा। पर गुड चीज जिहड़ी मैं कहन लगिया सी ओ ए है के
1: इत्थे ट्रैम आ एही कहना सी कि नवां की
0: है साडे लुधियाणे वर्गे
1: ट्रैम तो हैगी, देखो तुसी
0: ट्रैम प्रपोज्ड है, हले
1: प्रपोज्ड है, हां
0: वो तो मतलब कह रहे ने कि ट्रैम
1: चलो आ गई,
0: आ जानी है,
1: प्रपोज्ड ही है, बट कदों नु आऊगी ये भी नहीं दसया उन्होंने, प्रपोज्ड
0: बड़े चारा बड़े बड़े काफी टाइम तो कह रहे ने भी मतलब चला दो ट्रैम चला दो, बट मथुरा दे विच तां स्टिल चल सकदी है, पर उहदा वृंदावन नु गोकुल धाम नु फायदा की है, हैना, उहदा कोई एड्डा खास फायदा है नहीं। मथुरा दे लागे जे हैगा कि तुसी मथुरा चले गए ते डेढ़ घंटे की, डेढ़ भी नहीं घंटा भी नहीं, मेरे ख्याल ना 40-50 किलोमीटर ते आगरा पै जांदा, मथुरा आगे फिर गां 50-60 किलोमीटर ते आगरा, चल पर कुछ कोई इतिहास, वैसे तो इतिहासक
1: है शहर, इतिहासिक इतिहास सारा भरिया पिया है।
0: एक जेड़ा हाईवे है सीधा वाया हाथरस बदाऊ हुंदे हुए बरेली तो आंदा, जुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, ठीक है, एक तो बरेली तो जेड़ा सीधा हाईवे आंदा वाया हाथरस हुंदे होए वो मथुरा दे विचों गुजर के जांदा, ते फिर वो वाया मतलब भरतपुर हुंदे होए, फिर तुहाडी मर्जी है भी तुसीं उत्थों किधर नूं जाना, बट अदरवाइज वो राजस्थान गुजरात दे बड़े शहरां तक तुहानूं जोड़ दिंदा है, कोटा दे नाल जोड़ दिंदा, आपां शायद किसे टाइम च कढ़ना भी है कोटा, पर वो वाया उधरों होके आंदा,
1: ठीक है जी।
0: एक मथुरा तो जेड़ा हाईवे जांदा ओ सीधा आगरा नु, तुहानू दस्सिया ही है मथुरा आगरा, तो ए है भी मथुरा मुकिया ते आगरा शुरू हो गया,
1: नाल दी नाल ही पै जांदे
0: आ, नाल दी नाल ही शुरू हो जांदा,
1: तां ही इत्थे दे पेड़े फेमस आ, तो उत्थे दा पेठा, पेड़े एंड पेठा।
0: एक होर बड़ा हिस्टोरिकल सिटी फतेहपुर सीकरी भी नाल ही है,
1: अच्छा नाल ही पैंदा
0: है, हां मथुरा तो बहुत जिवें जिन्ना जिवें आगरा नेड़े, आगरा दा बड़ा शहर है पहला शुरू हो जांदा, फतेहपुर सिकरी भी नाल ही है जमी,
1: ओके
0: मसा ही अद्धे एक घंटे की ड्राइव होनी है। सो ए हो गए। एक अलीगढ़,
1: ओके
0: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना
1: जी,
0: तो देखी
1: जी,
0: है
1: जी,
0: दी मनोज वाजपेयी दी मूवी जिदे च ओह गे प्रोफेसर बने हुंदा,
1: नहीं
0: अलीगढ़ अच्छा। वो भी इत्थे ही पैंदा नाल,
1: ओके ठीक है।
0: ते वैसे जे तुसी मतलब क्योंकि हुण आगरा वाले हाईवे ते है, सो तुसी जे दिल्ली तो जाओगे ते दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे है, ओए होए होए क्या सड़क बनी हुई है, ओ मतलब नजारे, ते वाया मेरठ होके भी आ सकते हो, ते कट्टे कुट्टे फड़ के लियाने उत्थों
1: सही है,
0: ते सीधा जयपुर तो, जयपुर तो फतेहपुर सिकरी नू सीधा हाईवे है, आगरे तो दिल्ली नू हाईवे है, सो मथुरा तक रीच वेरी एक्सेसिबल,
1: ओके सारे पासे हां तो मतलब इजीली एक्सेसिबल,
0: बहुत इजी है, नया सड़कां ने ना,
1: हां जी,
0: क्योंकि वो एक तुसी वो कह लो कि एक ट्रायंगल बन गया, आ फतेहपुर सिकरी, आ मथुरा, आ आगरा, ट्रायंगल है
1: सारे पासे तुसी,
0: सो तीन बड़े शहर उत्थे तक पहुंचन दे लई जयपुर तो आ रही है सड़क, इधरों दिल्ली तो आ रही है, इधरों भी यूपी दे बड़े बड़े शहरां चो आ रही है, लखनऊ वगैरह तो, इधरों कलकत्ते तो आ रही
1: है, तीनों फेमस हैगे ने काफी,
0: तीनों फेमस ने, और जंक्शन मतलब यूपी दा है ना, यूपी दा तां नहीं सेंटर हैगा, पर हां कह भी सकदे हो, कह रहे
1: सही है,
0: ते ग्वालियर तो भी एक सड़क इत्थों नूं सीधी जांदी हैगी
1: जी,
0: सो ये है मतलब पहुंच मार्ग, ग्वालियर झांसी तो नहीं आपां कदे किते
1: नहीं
0: सुने, वैसे तुसीं झांसी ते ग्वालियर,
1: झांसी की रानी
0: ग्वालियर दे बारे तो आपां कीता सी दिवाली ते, ग्वालियर दसांगे तुहानू उत्थे दे, पर ओह मतलब इट्स वैसे भी यूपी नू कहा जांदा है कि स्टेट ऑफ सिटीज, कि इत्थे शहर ही शहर ने, जिवें तुसीं इक शहर मुकदा तां दूआ शुरू हो जांदा, यूपी च इन्ने शहर ने,
1: इन्ने निक्के निक्के निक्के हैं, निक्के वड्डे वड्डे भी ने, हां जी मतलब
0: बड़े ही शहर ने, मतलब शहरां वाला स्टेट हैगा यूपी दा
1: जी जी।

0: लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यो हाँ जी 1674।
1: आजा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, इश बॉय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: हाँ वे सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी, मैं हूँ इनका और आप मुझे सुन रहे हैं।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: Hanji Hanji, oye Hanji Hanji,
4: Hanji Radio.
5: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: केवल तानी ता बंद मुक्त कहो किसको गनी
1: जब एक हर गम अपार तब नरक सुरक को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्राव सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो हो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे
0: आपन चले तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार
1: अविनाशी सुखी अपने आसन तय जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्राव सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एक तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ रंजन अगोचर गादे तम कौन छुटे कौन बंधन बादे
1: आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा
0: जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता
1: जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लागत कहो कीस
1: जह जो स्वरूपी जो संग समावै तह किसे भू कौन तृप्तावै
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार
1: जापनी सुवा आपन संग बनाई तब कौन माए बा मित्र सुत भाई
0: जह सर्व कला आपे परवीन तह वेद कतेव कहां कोचीन
1: जब आपने आप उतार है तो सगन अपसगन कहां विचार है
0: जह आपन ऊंच आपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कही है चीरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गज जानो आप
0: जह अछल अछेद अभेद समाया ऊहा किस है व्याप्त माया
1: आपस को आपे आदेश तिहु गुण का नाही प्रवेश
0: जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जह आपन आप यारा तै कौन कथै कौन सुनने हारा
0: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप है पहुंचा
1: जह आप रचियो पर पंच आकार त्यो गुण में कीनो विस्तार
0: पाप पुन तह पई कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत
1: आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान
1: अपन खेल आप कर देखै खेल संकोच है तो नानक एक है
0: जह अवगत भक्त है आप जह पसरै पासार संत प्रताप
1: पाका आपै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप है कौत करे आनंद चोज आप है रस भोगन निर्जोग
1: जिस भावे तुसी अपन ना लावे जिस भावे तुस खेल खिलावे
0: बेशुमार अथा अगंत अतुले ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम 8:21 श्लोक
0: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार
0: जा तिस भावे ता सृष्टि उपाय अपने पाणे ले समाए
1: तुम ते पिन्ने किछ होए आपन सूत सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता
0: जी जंत्र सब ता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोए न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे
0: तिस्ता जबर कहां को जाए सब सरे एक निरंजन राय
1: जी की जुग जाके सुभात अंतर बाहर जानो साथ
0: गुण निदान बे अंत पार नानक दास दा बलिहार
1: पूरन पूर रह दयाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: अपने करतब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप
1: तत पाले जीन बो पात जो जो रचियो सुत सहत्यार
0: जिस पावे तिस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया
0: जान लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए
1: सेव को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार
1: बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजै गुर के पैर
0: यह लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साध संग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद
0: राम नाम तत् करो हो विचार दुर्लभ देह का करो उदार
1: अमृत वचन हर की गुण गावो प्रांत नुन काए हे सुआओ
0: आठ पहर प्रापि खोह नीरा मिटै अज्ञान बिन सहंधीरा
1: सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छा नानक फल पावो
0: हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमन बसै ते साज परीख्या
0: मनता नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पौ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै खेप तुम्हारी
0: टीका टीक रखो मन माही नानक बहर न आवे जाहे
1: इसते दूर कहा को जाए उबरे रखन हार ते आए
0: निर्भउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ रखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख
0: चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ता कै कारज पूरा
0: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख तु उदरत श्रेष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल
0: अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भल जना कै मन विश्राम 8:22 श्लोक
0: ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु काला का मीठा
0: सगल समिग्री ਇੱਕ ਸਕਟ ਮਾਹੇ ਅਨ

0: रंग नाना दृष्टा हे
1: नौनद अमृत पब का नाम देही में इसका विश्राम
0: सुन समाध अनहत नाद कह न जाई अचार्य विस्माद
1: देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिसन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहे आप भगवंत
1: करण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंड दै दिसै समाहे
0: जिसते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ
1: वेद प्राण सिमृत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक
0: वाणी प्रभु की सब को बोले आप अडूल न कबहु डूले
1: सर्व करा कर खेले खेल मोल न पाइए गुणे अमोल
0: सर्व ज्योत मह जाकी जो तारहे ओ स्वामी ओत पोत
1: गुर प्रसाद ब्रह्म का नाश नानक तिन मैं एहो विशास
0: संत जना का पीखन सा ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म
1: संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत
1: जो जो होए सो इश्क मान करण करावन हर प्रभु जान
0: अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सा मोही
1: आप सत किया सब सत तिस प्रभु सगली उत्पत
0: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एकंकार
1: अनकला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए
0: कवन लिखत कवन कही है दूर आपे आप आप भरपूर
1: अंतर गज से आप जनाए नानक तिस चन आप बुझाए
0: सर्व भूत अवतारा सर्व नैन आपे खनहारा
1: सगल समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
1: सबके मदल पत्तो रहे जो कुछ कहना सो आपे कह
0: आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए
1: इसते होए सुनाही बुरा उरे कहो किने कुछ करा
0: आप ला कर तू ततनी की आपे जाने अपने जी की
1: आप साज तारी सब साज ओत पोत आपन संग्राह
0: ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए
1: इसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभु सोए
1: ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकुट जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया
1: जानावन कहे सुआओ जन कह संचित आवे ना
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना के मन विश्राम अठ तेई श्लोक
0: पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ सत नाम श्री वाहेगुरु अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे
0: सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस नित्या गोतरंग संत जना की दूर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करो साध संग आगन सागर तरहो
1: हर तन की भर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा
0: सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलीक लाल यह रत्न
0: संत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक कह निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महत के माथे नानक उदरे तिन कह साथे
0: शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध संगलैन
0: सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव
1: आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुरस न कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक निभी खेप हमारी
1: तब की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस है सो होत निदान
1: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान बहर न हो वै आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप योग पव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगा सब कै मध सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बीता समदर्शी एक दृष्टि
0: ते फल तिस जन कै मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने
1: इहो निधान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मता केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन विश्राम
0: कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जन ते छुटै
1: जा कै मस्तक क्रम प्रपाए साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्री तिस जन आवै हर प्रभु चीत
1: मरणता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै
0: निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से बै परम साध नाम निर्मलता के करम
0: सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम पत जना कै मन विश्राम अठ चौबीस श्लोक

0: थी नीचे थी आंखें पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
1: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.in।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को जब एक नए परिपेक्ष में देखना शुरू किया, एक सबसे बड़ी बात जो रिश्ते आज कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होते जा रहे थे, लगता था कि उन पे बहुत काम करने की जरूरत है, कैसे ये रिश्ते सही हो सकते हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ मिली, जो ताकत मिली, वो ये कि जो इमेज मैं क्रिएट करना चाहता हूं, जिस रिश्ते में मैं हूं, वो मैं खुद कर सकता हूं। वो इमेज क्रिएट करने के बाद जो वाइब्रेशंस जाने शुरू होती हैं, तो अपने आप खुद ब खुद वो रिश्ते सुधरने लग सकते हैं। ये हमने कहा था हर बार की तरह के अनुभव करके देखें, क्योंकि जो जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते जाएंगे उनका अनुभव हमें सुदृढ़ करता जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं। आगे और बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रिश्ते जो इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए कैसे सुदृढ़ हो सकते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो हमें बहुत आश्वासन मिला है आपके साथ जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कि वो रिश्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता, चाहे वो बच्चे के साथ का रिश्ता है या बॉस के साथ का रिश्ता, एक जो हमें ये मिला कि उन्हें ठीक किया जा सकता है। जहां हम बिल्कुल हताश हो गए थे, हमें लगता था कि इसमें कोई चांस नहीं है, देयर इज नो अदर वे, आई डोंट हैव अ चॉइस, वहां ये रास्ता दिखा और अपने ही हाथ में होता हुआ दिखा। अब ठीक है, टाइम लगेगा, भी काम कर सकती हूँ मैं उसके ऊपर। आज थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं।
1: तो सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा कि वेयर डज द रिलेशनशिप स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इन माय कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में जब दूसरे का चित्र निर्माण करे तो ध्यान से करें कि कौन से कलर्स यूज करते हैं, और कोशिश करें कि उनकी एक एक विशेषताओं के रंग से लेट अस क्रिएट दैट पिक्चर इन आवर कॉन्शियस।
0: मैंने देखा, हमने मतलब देखा है हमने, जब तो हमें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है जब हम दूसरे की इमेज गंदी वाली क्रिएट कर रहे हैं,
1: क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई इट मस्ट बी हैपनिंग, बट इट मस्ट बी, मे बी इट मेक्स मी फील बेटर अबाउट माई सेल्फ,
0: कि मैं ठीक,
1: दैट कुड बी द ओनली लॉजिक, अदरवाइज और कोई लॉजिक ही नहीं उस पर बैठता। जस्ट बाय सेइंग कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इट गिव्स मी द फीलिंग दैट आई एम बेटर, और दूसरा इट ऑल्सो शायद गिव्स मी द परमिशन टू रिएक्ट विद योर बिहेवियर, यू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं संपर्क में आ रही हूँ तो आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। मैं कभी गुस्सा हो रही हूँ आपके साथ, कभी आपके साथ मैं परेशान हो रही हूँ, कभी आप पर मैं चिढ़ रही हूँ, ये सब मैं कर रही हूँ व्हेन आई कम इन इंटरेक्शन विद यू, लेकिन वो सब मेरा जो व्यवहार है वो जस्टिफाइड कब होगा?
0: जब मैं ये कहूँ कि आप तो हो ही खराब,
1: नहीं तो वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप अच्छे हो और मेरा व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर कौन खराब हो गया?
0: मैं।
1: सो दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम।
0: तो दोनों में से एक तो खराब होगा ना,
1: क्योंकि मेरा व्यवहार मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरा व्यवहार ऐसा है क्योंकि आप ऐसे हो। सो दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने व्यवहार को चेंज करना है, उसके लिए पहले मुझे अपनी सोच को चेंज करना है, उसके लिए मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे उनके प्रति अपने दृष्टिकोण को चेंज करना है, क्योंकि समवेयर इट डिपेंड्स ऑन विच कलर स्पेक्स आई एम वेयरिंग। आपने तो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना मैंने कौन से रंग का चश्मा पहना।
0: अगर आपने लाल पहन लिया तो ये ग्रीन भी आपको लाल दिखे।
1: यस, एंड फिर आपको उस लाल रंग के चश्मे से देखते हुए मुझे आप लाल ही दिखाई देंगे, और फिर मेरा रिश्ता किस कलर से जुड़ा? रेड से जुड़ा, बट एक्चुअली तो आपने ग्रीन पहना है। तो समवेयर माई रिलेशनशिप इज नॉट ऑन द राइट फाउंडेशन। सो इट्स नॉट अबाउट आप कौन से रंग के हैं, इट्स अबाउट मेरा जो परसेप्शन का चश्मा है वो कौन से कलर का है। और जैसे आपने कहा कि हम ज्यादा क्यों नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि अगर हम जितना नेगेटिविटी का चिंतन करते जाएंगे तो हमारा चश्मा कौन से रंग का हो जाएगा?
0: नेगेटिव।
1: अब आपके अंदर हो सकता है बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मेरा चश्मे का रंग ही नेगेटिव है, तो आप मुझे कैसे दिखाई देंगे?
0: कम्प्लीटली नेगेटिव।
1: एंड फिर मेरा जो रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ेगा वो किस आधार पर होगा? बेस्ड ऑन दैट कलर दैट आई हैव क्रिएटेड विथ यू। तो यस, बहुत इजी है कहना कि वो है ही ऐसे, और थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने ऊपर बैठकर वर्क करके अपनी परसेप्शन को चेंज करना। चॉइस इज माइन। क्योंकि जितनी बार आई एम गोइंग टू से वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे, आई एम क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी and I am transmitting negative energy, and then I will receive negative energy and then I will stay in pain. And ye pura process maine create kiya. अब अगर मैं दर्द की बजाय खुशी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ तो मुझे अपने चश्मे का रंग चेंज करना पड़ेगा. रिलेशनशिप मीन्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. तो हर स्टेप पर चेक करते जाए मैं कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूँ. स्टॉप थिंकिंग वो कौन सी एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेट्स से कि आपके अंदर 99 कमजोरियां हैं फिर भी एक विशेषता तो होगी. अच्छा इफ यू आर फाइंडिंग समवन होगा नहीं लेकिन यू आर फाइंडिंग समवन जिसके अंदर कोई विशेषताएं नहीं है तो भी मैं कौन सी एनर्जी फिर उसको ट्रांसमिट करता हूँ. दैट इज स्टिल गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन माई कॉन्शियसनेस. हम जो दृष्टिकोण से दूसरे को देखते हैं वो उस पर भी डिपेंडेंट है कि मेरी कॉन्शियसनेस क्या है बिकॉज वो मेरे चश्मे का कलर है.
0: इनफैक्ट यस मैं पूरी दुनिया को भी एक्चुअली किस कलर से देखता हूँ.
1: एंड दैट्स वाई सेम दुनिया and someone will say the world is so beautiful and someone will say the world is a big mess.
0: Actually yes, you know agar hum deep mein jaye jisko burai dekhne ki aadat hai jo burai karta hai wo sabki hi burai kar raha hota hai kuch bhi acha nahi lag raha hota unhe
1: to kahin na kahin wo sare log bure nahi hain lekin mujhe hi dekhne ka nazariya aur isiliye parmatma ne aakar hame kaha ki swa parivartan karenge to vishwa parivartan अपने आप हो जाएगा. हमें औरों को चेंज नहीं करना. हम अपने एटीट्यूड को अपने परसेप्शन को चेंज करते हैं तो वही लोग वो वैसे के वैसे होते हैं. दे डोंट चेंज. वही लोग हमें अलग दिखाई देने लगते हैं. व्हाट हैज हैपेंड वेयर हैज द चेंज टेकन प्लेस इट्स हियर. सो इट इज वेरी इजी टू लुक आउटसाइड लिटिल चैलेंजिंग टू लुक इनसाइड लेकिन सोल्यूशन यहीं पर
0: इनसाइड.
1: तो अगर कोई अपने ऊपर सचमुच में काम करके रिजल्ट पाना चाहता है तो उसको फिर काम तो वहीं करना पड़ेगा जहां काम हो सकता है. आप ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें. यू वर्क ऑन द रिलेशनशिप देयर एंड फिर आपको रिजल्ट नहीं मिले फिर आप और फ्रस्ट्रेट होते जाएं और फिर आप और एक दूसरे से कटते जाएं. वी आर गेटिंग नोवेयर.
0: एक्चुअली वेरी ट्रू. यू नो हम कोशिश जब हम करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ आज आएंगे तो मैं ठीक रहूंगी और फिर मैं ठीक ठीक बिहेव कर रही होती हूँ. मैं सही बातें बोलने का प्रयास कर रही होती हूँ और मैं बोलती भी हूँ सही लेकिन तब भी वो रिश्ता ठीक नहीं हो पाता क्योंकि
1: सोचते. आप देखो हम सब ने ये आर्ट सा मास्टर कर लिया है कि अंदर भले हम नेगेटिव सोचते हैं उसको कन्वर्ट करके हम पॉजिटिव बाहर देते हैं क्योंकि हमने सोचा रिश्ता मतलब क्या. कम्युनिकेशन रिश्ता मतलब जो मैं आपसे बोलती हूँ. रिश्ता मतलब जो मैं आपके साथ करती हूँ. रिश्ता मतलब जो हम एक दूसरे के प्रति सोचते हैं. तो कहीं भी कोई भी रिश्ते में अगर कहीं ऊपर नीचे आ रहा है जस्ट स्टॉप एंड सी कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं नहीं इम्पोर्टेंट. आप देखो हम जब सोचते भी हैं सारा दिन तो हम ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. बिकॉज नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज आई फील कि मैं अच्छा तब फील करूंगी जब आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे. बट एक्चुअली मैं अच्छा तब फील करूंगी जब मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ. नो डिफिकल्ट.
0: नो नो नो यस एक्चुअली
1: सी हाँ जस्ट सी द कनेक्टिविटी. आई एम थिंकिंग कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो आप मेरे बारे में अच्छा सोचो तो मुझे अच्छा लगेगा. बट एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग लाइक दिस. एनर्जी इज फर्स्ट फ्लोइंग लाइक दिस. तो मैं अगर आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो सबसे पहले मुझे अच्छा फील होगा.
0: ऑफकोर्स अगर वेरी ट्रू. अगर कोई मुझे व्यक्ति अच्छा लगता है कोई देख के मतलब इफ आई लुक एट यू एंड आई फील गुड अबाउट यू.
1: आई फील गुड. I feel good. Now it is possible ki I don't think very good about you. It is possible ki I don't think very good about you. Ya mera vyavahar bhi shayad aapke sath utna acha nahi hai. Fir bhi aapko kaisa feel karna hai wo fir bhi aapke hath mein hai. So let's start just working on myself. Take the control back. I am going to keep the control in my hand. पर अपने पर फोकस नहीं होगा तो ध्यान ज्यादा क्या होगा. आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या बोलता है वो मेरे बारे में क्या सोचता है. एंड देन आई कंज्यूम दैट एनर्जी. वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे और ये सब कंज्यूम करके वो अच्छे नहीं है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट वो अच्छे नहीं है, एंड बुरा किसको अब फील होने वाला है
0: मुझे, क्योंकि नहीं और होने लग जाता है ना, बिकॉज इट हर्ट सो डीपली कि उन्होंने मेरे बारे में ये कहा, यू नो दे थिंक दिस वे अबाउट मी, मेरे बारे में ऐसा सोच लिया, और फिर मैं उनके बारे में अगर अच्छा सोचते भी होंगे तो उनके बारे में बुरा सोचूंगे.
1: एग्जैक्टली. सो अगेन
0: मैं उनके बारे में अच्छा सोचती थी, मैं उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं.
1: भले ना वो मेरे बारे में सोचे, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे क्या सोचना है. दैट्स व्हाई द फोकस बिकम्स मैं एंड मैं.
0: लेकिन सोच क्या रही हूँ, फोकस अभी भी मैं ही था,
1: मैं ही था, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ. पहले फोकस ये था कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो पहले वो था कि मेरे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, बिकॉज माई फीलिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन यू, बट नाउ आई रियलाइज माई फीलिंग इज माई क्रिएशन. That is what was important. Let's say आपने green साड़ी पहनी है, feel good about that. If you feel good, then that's your creation. अब ये जरूरी नहीं है कि दुनिया आकर उसको praise करे. उसमें क्या होगा, अगर चार लोग appreciate करेंगे, दो लोग criticize भी करेंगे. लेकिन अगर मेरी मन की स्थिति बार बार ऐसे fluctuate होने वाली है, then मेरे हाथ में क्या है. लेकिन अब जब हमें समझ में आ गया कि क्रिएट हम करने वाले हैं, आई कैन चूज वॉट टू क्रिएट एंड बी वेरी केयरफुल सारा दिन, आई एम क्रिएटिंग. जस्ट दैट मच अवेयरनेस इज नीडेड सारा दिन कि आई एम क्रिएटिंग, तो जर्नी कैसे हो जाएगी. वेरी सिंपल. द फर्स्ट पॉइंट था कि वेयर डज द रिलेशनशिप गेट क्रिएटेड, अपनी कॉन्शियसनेस में. दूसरा पॉइंट बहुत जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो हमने कई बार रिपीट किया है लेकिन वो फंडामेंटल है, एंड दैट इज हु हर्ट्स हु.
0: I hurt myself. ये तो एक पूरा स्टेटमेंट ऐसी है
1: ये, लेकिन जितना प्रोफाउंड ये स्टेटमेंट है उतना ही ये प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट लगता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जब भी हम रिएक्ट करते हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं,
0: आपने हर्ट किया,
1: आपने हर्ट किया. तो हु हर्ट्स हु, आई हर्ट माई सेल्फ, दर्द मैं अपने आप को दे रही हूँ. ये जितनी बार हम बार बार अपने आप को समझाएंगे तो हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा.
0: और इनफैक्ट फिर मुझे उन्हें समझाना तो पड़ेगा. अगेन यू नो, मुझे समझाना ये नहीं करना कि मैं उनको अपने आप को जस्टिफाई ना करूं, भी कोई मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन बिना हर्ट हुए
1: स्टेबिलिटी.
0: हाँ, अगर मैं कह पाऊं कि थी इट वॉज नॉट लाइक दिस,
1: दैट्स ओके, दैट इज फाइन. लेकिन आई हैव टू रिमेम्बर कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, मैं खुद अपने आप को हर्ट कर रही हूँ. इमोशनल हर्ट ये कोई और मुझे नहीं कर सकता है, फिजिकली कोई मुझे मार सकता है, लेकिन यहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुंचता. यहाँ ओनली आई हैव द टोटल कंट्रोल. बार बार जब भी वो दर्द थोड़ा सा भी क्रिएट होना शुरू हो, आई एम हर्टिंग माई सेल्फ, स्टॉप, वर्क, मूव अहेड. लेकिन जहां मैंने बोला दे आर हर्टिंग मी, तो वो दर्द तो कभी तक चलता जाएगा. वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि सामने वाला जो बोल रहा है वो बहुत परफेक्ट बोल रहा है. ठीक है, मे बी यू आर नॉट फाइंडिंग कि जो वो बोल रहे हैं दैट्स राइट फॉर यू, लेकिन हर्ट कौन क्रिएट कर रहा है. आपको पता है यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई होती है किन लोगों ने हमें हर्ट किया है, और काफी लिस्ट होती है,
0: काफी बड़ी होती है.
1: और उस लिस्ट को हमने काफी समय से पकड़ा हुआ होता है. एंड टूडे इफ आई जस्ट सिट बैक विद माई सेल्फ एंड आई से हु हर्ट मी एक्चुअली, किसी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया, कोई मेरा लाखों लेकर चला गया, किसी की वजह से तो मेरा बिजनेस ही पूरा कोलैप्स हो गया, किसी ने मुझे रिश्ते में धोखा दे दिया, व्हाट इज आई से, बट हुज क्रिएटिंग द पेन. उन्होंने जो करना था सो किया. राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, इम्पोर्टेंट इज दर्द फिर भी कौन क्रिएट कर रहा है, कब तक. सी, बाहर आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, बट देन यू आर नॉट इन माई कंट्रोल. यू नो, यू आर नॉट. अगर आज आप मेरे साथ प्रॉपर्टी पर लड़ रहे हो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के मेरा लाखों रुपए लेके चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. आज आप एक हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में आप रिश्ता तोड़कर बाहर कहीं चले गए, नॉट इन माई कंट्रोल. लेकिन माई पेन,
0: इट इज इन माई कंट्रोल,
1: दैट्स आई एम क्रिएटिंग. तो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट, क्योंकि जहां सेल्फ पर मैनेज किया तो फिर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाएगा. अभी हम कहते हैं सिचुएशन इतनी बड़ी थी, दे कॉज्ड मी हर्ट. नो, देयर इज ओनली वन वर्ड देयर हु कॉजेज पेन टू मी, दैट्स माय सेल्फ. दे कैन डू थिंग्स, जो उनको करना है वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन दर्द फिर भी मैं क्रिएट करता हूँ. मेनी पीपल विल से लेकिन आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया किया, फिर भी दर्द किसने क्रिएट किया?
0: क्योंकि दर्द मुझे इसका हुआ कि वो चला गया, या दर्द मुझे इसका ये हुआ कि उन्होंने मुझे धोखा दिया. यू नो, सो धोखा दिया एक सिचुएशन, लेकिन वो
1: दर्द किसने क्रिएट किया?
0: हाँ, कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं उस पर इतना ट्रस्ट करता था, मेरे साथ ऐसा हुआ. यस, वेरी ट्रू. यू नो,
1: इट्स ओके इफ आई एम इन पेन, लेट मी वर्क एंड मैं उसको हील करूंगी. लेकिन मैं उसको हील तभी कर पाऊंगी जब आई रियलाइज कि ये दर्द मैं क्रिएट कर रही हूँ. हम कई बार जीवन भर उस दर्द को इसलिए पकड़ के रहते हैं
0: कि मैंने उसी ने किया,
1: उसने हाँ. किया तो वो आकर उसको ठीक करेगा.
0: जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा, कहते हैं ना हर बार.
1: ठीक है, तो अब किसने दर्द दिया? हमें ही दवा देनी है ना. दैट इज द पॉइंट. वी आर नॉट सेइंग कि हाँ दर्द होता है, कुछ बात ऐसी होती
0: है. वी कीप ऑन वेटिंग दैट पर्सन विल कम एंड अपोलोजाइज और थिंग्स लाइक दैट एंड देन थिंग्स बट थिंग्स विल नेवर बिकम सेम. इवन इफ दैट पर्सन कम्स और वो माफी मांग के मुझे हील करने की कोशिश करता है, मैं क्या हील होंगी? मैंने वो जो वो पूरा टाइम गुजारा है, मैं उसको वो कह के मैं ना उसको जीने दूंगी ना खुद जीऊंगी,
1: क्योंकि मैंने इतना दर्द क्रिएट किया हुआ है. अब मेरे पास देने के लिए क्या है उस रिश्ते में? दर्द ही है. तो इसलिए एक दिन बैठ कर आज ही रात को सोने से पहले उस लिस्ट को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर आए. हाउ मेनी पीपल हैव हर्ट मी इन माई लाइफ एंड देन डिलीट
0: वाइप ऑफ कम्प्लीटली एक्चुअली.
1: एंड यू विल बी एबल टू वाइप ऑफ. वी आर नॉट सेइंग दैट द पेन विल गो अवे. Maybe not immediately.
0: But I think that person
1: that
0: will go away.
1: Person will go away. That is fundamental. First let the person go away. Phir to pain dheere dheere jaldi khatam ho jayega. Kyunki main creator hoon to mujhe finish karna easy hai. Lekin aap creator hain.
0: To phir wo to jab tak woh nahi aayega tab tak, jab tak uske saath waisa nahi hoga tab tak nahi. You know, like so many things we have.
1: Yeah. So ek ek ko lete jao. Situation ko rewind karna chahte ho ek din ke liye kar lo. रिवाइंड करो और फिर भी देखो कि सिचुएशन बाहर थी, दर्द यहां था. डिवोर्स बाहर था, दर्द यहां था. बिजनेस कोलैप्स बाहर था, दर्द यहां था. हुए बहुत साल हो गए और दर्द तो अभी तक पकड़ा हुआ है. आज भी एक रिवाइंड बटन दबाओ और सारा कुछ.
0: बिकॉज
1: वी कैन क्राई राइट हियर.
0: यह आई कैन ऑफ कोर्स.
1: सो वेयर इज द पर्सन? वो व्यक्ति तो अभी है भी नहीं, बट वी कैन क्राई राइट हियर.
0: बिकॉज यस, यू नो, समवेयर डीप विद इन आई केप्ट ऑन फीलिंग दैट ही इज द ओनली वन हु कैन हील. शी इज द ओनली वन हु कैन कम चेंज द सिचुएशन और डू समथिंग.
1: तो फिर तो हमारे हाथ में कुछ
0: भी नहीं, और वो कभी भी नहीं आने वाला.
1: एंड फिर हम जीवन दर्द में ही बिताएंगे. तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से ले लेंगे कि आई एम द क्रिएटर ऑफ द पेन, आई हर्ट माई सेल्फ, तो अपने आप को ठीक करना बहुत इजी हो जाएगा.
0: फर्स्ट इज लाइक वाइंडिंग अप दैट पर्सन.
1: जस्ट लेट गो, बिकॉज वो लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको यहाँ क्यों घर में बिठा कर रखा
0: है? सालों पुराने होंगे. मतलब सी आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई कैन एक्चुअली स्टिल रिमेम्बर
1: ऑल द पीपल देयर.
0: लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मतलब आई एम नॉट इवन इन टच. लेकिन वो उनकी इमेज है.
1: वो फिर भी आपके घर में रहते हैं. हाँ, लेकिन यहाँ
0: घर पर रहते हैं. और मतलब वो जब तक मैं उनका डिलीट नहीं करूंगी अपने उससे, तब तक वो रहेंगे.
1: यस. नाउ अगर आपको अभी भी किसी भी रिश्ते में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रही है, इट्स ओनली बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. आई एम क्रिएटिंग द हर्ट. जैसे ही हम अपने ऊपर इस एंगल से वर्क करना शुरू कर देंगे, तो हम दर्द को खत्म करना शुरू कर देंगे. अब आपने तो जो किया सो किया, बट इफ आई गेट हील्ड तो मेरा आपके साथ रिश्ता कैसा हो जाएगा?
0: हाँ, बिल्कुल परफेक्ट.
1: एंड रिलेशनशिप
0: आपके साथ मुझे वो खत्म हो जाएगा ना. आपसे जो उम्मीद थी या आपसे ये एक्सपेक्टेशन,
1: और आपके ऊपर जो ब्लेम था.
0: हाँ,
1: पहली बात, आपके ऊपर जो मैंने ब्लेम लगाया था कि आप मेरे दर्द का कारण है, वो खत्म हो जाएगा. तो फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. आई हैव टू ओनली फॉरगिव माई सेल्फ. एंड अगर हम दूसरे को भी देखते हैं कि दूसरा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमने पहले भी देखा कि आई क्रिएट माई पेन एंड इसी तरह यू क्रिएट योर पेन. मैं आपका भी पेन क्रिएट नहीं करती हूँ. सो सिमिलरली इफ आई सी यू इन पेन
0: बिकॉज ऑफ मी,
1: एंड अगर आप दर्द में बहुत कुछ ऊपर नीचे बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये स्मृति है कि आप दर्द में हैं बिकॉज ऑफ योर ओन पेन, तो मुझे स्टेबल रहना मेरे लिए आसान है. और उसके बाद अगर मैं स्टेबल रहूं तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा हो जाएगा?
0: normal, stable,
1: normal. So everything just seems to fall into place.
0: Mm.
1: Not that it will get done today, but it becomes easier. ये करना संभव हो जाता है जब मुझे ये पता चलता है मुझे सिर्फ अपने को हील करना है दूसरा जैसा है वैसा ही है लेकिन वो तो ऐसे बात करते हैं करने दो लेकिन वो तो मुझे अब्यूज करते हैं ये करते हैं करने दो When I change, the world changes. Automatically stability आएगी दूसरी तरफ लेकिन एक साइड भी दर्द में जाता फिर दूसरी साइड भी जाता तो दर्द की फ्रीक्वेंसी
0: It feels so good. मैं बात करते करते ही I can see so many relationships becoming much better. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बाप बेटे का रिलेशनशिप यू नो कहीं एक जो एक कहा जाता था एक चुप कर ले और दूसरा It can
1: Absolutely.
0: happen. It happens.
1: And no one can hurt me. I met a brother and उसने अपनी मदर से बहुत सालों से बात नहीं की थी because कुछ हुआ था past incident. And फिर वो program के end पर आए और उन्होंने कहा कि my mother is in lot of pain and I am in lot of pain and अब मेरे father नहीं रहे and my mother is alone and you know whatever. I said आप अपनी मदर से जाके बात क्यों नहीं कर लेते and you know everything will become okay. And he says नहीं but आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा किया उन्होंने वैसा किया I said लेकिन उन्होंने जो किया सो किया हम अब क्या कर रहे हैं आप इतना जो दर्द अपने अंदर अब क्रिएट कर रहे हैं ये पहले आपको मिल रहा है फिर आपकी वाइफ को मिलेगा आपके बच्चों को मिलेगा वो एक रिलेशनशिप में नहीं रहता है वो दर्द औरों में भी जाता है टू फिनिश दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक हाउ मच टाइम गो टॉक एंड इट्स फिनिश्ड ही डिड इट आफ्टर द प्रोग्राम ही वेंट देयर नेक्स्ट डे ही केम फॉर अनदर प्रोग्राम चलिए तो बहुत ईजी था क्योंकि होता तो बहुत ईजी है ना बट हमें टाइम लगता है दैट्स ओके That is my journey. I can take my time.
0: Actually, जिस दिन ये realize हो गया कि वो कारण है ही नहीं मेरी pain.
1: मैं हूँ और वो मेरे हाथ में है अब मुझे कितनी जल्दी उसको finish करना.
0: तो ठीक है फिर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ मेरे को 10 दिन चाहिए मुझे 1 दिन चाहिए मुझे 100 दिन चाहिए मुझे 1 second चाहिए
1: Whatever. That's my choice. But at least the power
0: is in my hand now.
1: अब मैं अपने रिश्ते को जब चाहूँ तब ठीक कर सकती हूँ पहले आई वॉज अ विक्टिम तो मैं वेट कर रही थी और फिर मुझे सारे रिश्ते उल्टा बिखरते हुए दिखाई दिए क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि दूसरे लोग उनको ठीक करेंगे सो दैट इज द फीलिंग ऑफ अ विक्टिम कि मेरे साथ तो कोई भी ठीक नहीं है
0: मुझे कितने सारे जो सीन्स हैं वो रिवाइंड होके बेटर रिश्ते दिखते हुए नजर आते
1: हैं बिकम्स वेरी वेरी इजी So the second important point is who hurts who. I have to always remember I hurt myself. तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है ये जो labels हम लोगों को लगा देते हैं तो एक बार मैंने label लगा दिया कनुप्रिया ऐसी है लगा दिया अब आपके ऊपर label. अब हर रोज के interaction के बाद मैं उस label के अंदर
0: एक एक incident
1: बैगेज भरते जाती हूँ भरते जाती उसने ऐसा किया उसने ऐसा बोला
0: देखा ये जस्टिफाई हुआ yes. पुख्ता हो गई मेरी बात ये लेबल ठीक हो गया
1: हाँ, तो मैं वो लेबल लगाकर रोज उसमें बैगेज बैगेज भरते जाती हूँ एंड जितना समय हम इस बैगेज को पकड़ कर रखेंगे उतना वो बैगेज
0: भारी
1: होता जाएगा एंड इट कैन रीच अ स्टेज वेर आई कैन स्टिंक इनसाइड बिकॉज आई हैव सो मच बैगेज
0: तो मुझे ले डूबेगा ना वो भारी होगा कि मैं डूब जाऊँ
1: एब्सोल्युटली तो कहीं ना कहीं ये जो हमने पहले तो अभ्यास कर दिया है लेबल्स लगाने का तो कहीं ना कहीं तो वो लेबल्स ही हम लगाना बंद करें लेकिन उसमें फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा अब टाइम लगेगा इस यात्रा पर लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें कि एक एक लेबल के साथ बैगेज आज हमने क्या ऐड कर दिया था इज इट पॉसिबल कि मैं वो बैगेज निकाल कर फिनिश करूं उसको हल्का करूं क्योंकि वो निकालने से हु इज गोइंग टू फील बेटर
0: आई विल फील
1: बेटर दिस इज मोर अबाउट यू नो होल्डिंग थिंग्स अबाउट अदर पीपल तो इफ आई कीप होल्डिंग दोज थिंग्स यहां बहुत भारी होता जाएगा और फिर मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी कि मुझे एक्चुअली क्या करना है क्योंकि मेरा ये सारा बैगेज तो और लोगों से बहुत भर जाएगा तो बहुत इजी है इसको अगर सारा दिन में हम कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही हम कुछ भरने लगे यहां ये तो ऐसे हैं ये तो ऐसे हैं स्टॉप नो आई डोंट नीड दिस दिस इज अननेसेसरी वेट आई एम नॉट गोइंग टू कैरी सो मच वेट तो एंड ऑफ द डे कैसा फील होगा
0: लाइट
1: I will feel very, very light. तो baggage जो परमात्मा शिव बाबा भी कहते कि ये इतना बड़ा बोझ जो लेकर सारा दिन चलते हो, इसको हल्का करो. And baggage is always about
0: others.
1: जो मुझे लगता है कि हाँ नहीं मुझे कैरी करना है, लेकिन कहीं ना कहीं यू नो मैंने जस्टिफाई करते जाती हूँ अपने आप को कैरी करना. तो कॉन्शियसली ट्राई करें कि जैसे ही वो बैगेज रखने लगे उसी टाइम ही, क्योंकि ये बैगेज इतना भारी हो सकता है कि यहां तो दर्द देगा ही देगा, लेकिन यही बैगेज एक ना एक दिन कोई फिजिकल बीमारी का भी कारण बनता है.
0: और इनफैक्ट आजकल हम जितनी भी फिजिकल बीमारियां हैं उसमें पीछे कहीं ना कहीं जो मेंटल इलनेस है वो है.
1: कोई ना कोई हर्ट, कोई ना कोई गिल्ट, कोई ना कोई रिजेंटमेंट ये पकड़ के रखा 5 साल 10 साल 20 साल इसको पकड़ कर रखा हुआ है, आज वो बीमारी का रूप ले लिया. वो तो वही है, तो वाई है अब सफर किसको करना पड़ेगा. मी वाई जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर दैट आई एम कैरिंग
0: सो मच बैगेज.
1: तो क्यों ना रोज ही, इसीलिए हमने कहा कंप्यूटर की स्कैनिंग, इसलिए जो हम वो हर एक घंटे के बाद 1 मिनट करते हैं ना, तो रात को भी क्यों हल्का करना है. हर एक घंटे के बाद ही अगर कुछ ऐसा भर गया हो, स्टॉप, इट्स ओके, वो जैसे हैं वैसे हैं, आई डोंट नीड टू कैरी इट. नहीं तो आप देखो हमने अननेसेसरली बहुत लोगों का भर लिया है.
0: अच्छा, वो जैसे हैं वो अपने परिपेक्ष में तो सही है,
1: सही है.
0: हम हमेशा दूसरे को ऐसे
1: जजमेंट हो.
0: हाँ वही, जो मैं एक्चुअली आई लाइक दैट थिंग यू नो, कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही है उसको मैं एक जजमेंटल बन जाता हूँ कि वो चीज ही अच्छी नहीं है. यू नो दिस इज एक्चुअली द मोमेंट वी रियलाइज दिस डिफरेंस.
1: माई डिसलाइक एंड जजमेंट, ये दो डिफरेंट चीज है.
0: आई डिसलाइक दैट थिंग बट इट डज नॉट मीन दैट इट्स बैड.
1: इट्स बैड, या इट मे बी गुड फॉर देम.
0: इनफैक्ट इट्स अमेजिंग यू नो, अगर हम रिश्तों को सचमुच में देखें कि हमने क्या किया हुआ है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी प्रोसेस हमारे ही हाथ में है. थैंक यू सो मच सीता शिवानी. हर बार हम देखते हैं कि जिंदगी आसान होने का एक माध्यम है कि अगर हम थोड़ा सा अपना जो कलर है वो एक सारे चश्मे उतार के, सारे लेबल्स उतार के क्लैरिटी से देख पाए, और वो हमें ज्ञान से मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान जो मिलता है. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, स्वागत करते हैं आपका. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-3444-666, 0987-3666-555, 0999-7444-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन रिश्तों को एक नए रूप में देखने का ये प्रोसेस, ये खोज चलती रहेगी. अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लो जी तुहाडी नजर है बोला
1: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए भोले ओए टू

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: तैनू ओदे नाल मिलाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी। मैं ते बस अपनी दोस्ती निभाउण आया सी।
1: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।